0: जा, एक नहीं आस की दूजे लग जाए, नानक अस कंडिये सद ही रह समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हुए, आस के हुना खिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे मुडो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए ना कहाई, पाए पौड़ जित से भी है सुख।

से यीशु पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाइए अपना साका हाल बुरी क्यों कालिए बंदा मूला की चीज दे लम्बी नदे नहालिया जो साहिब नाल नहारिए ते वे हप्पा सा टालिया पिछलाए ऊपर कालिया पिछलाए ऊपर कालिया।

चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए गुरमत सुनो अगली हो वजो पेधु ना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिए सवास नानक हुक्म ना चले।

नानक अंतरा जप निहर ताके पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गलिंच जीरिया दूरी चढ़े बुसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन

0: आपे भांडे साजना पे पूर्ण दे, इकनी दूध समाया चुलेरा चढ़े, इकने हाली पैसा मन कुपरण खड़े, ते ना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा।
1: आपे सजे करे आप जाई पे रखे आप, तिस विजन ते पाए के देखे था पे था, किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका।

चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु।

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजै तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख शफारी कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दम आपदा ते राखे गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज ज्यों जानो हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिया लोक करत बिकार बिखड़ी प्रभ नेर हूँ ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारहु काड भव जल फिरिया असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लैहु हों पापी बड़ गुन है गार दर्शन प्यासी दिन सरात चित

है, अवर किया जाने कोई रहाउ। साचा साहिब सच तू मेरे साह, तेरा किया सच सब होए, झूठा किस को आखिए साह, दूजा नहीं कोए, सबना विच तू वरतदा साह, सब तुझ है त्यावह दिन रात, सब तुझ ही था वो मांग दे मेरे साह, तू सब ना कर है एक दात, सब को तुझ ही विच है मेरे साह, तुझ ते बाहर कोई नाहे, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह, सब तुझ ही माहे समाहे, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह, ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह, ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा। मेरे साह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साह, अवर किया जाने को।

0: मर्तबा रंग प्रंग अनेक ने जापन करते वाह जिया अंदर जियो सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दसन दास तुद्या के बिनवता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुधाई गाय खिले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया बच धर्म दूर करमी आपू अपनी।

0: रंग परंगे नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वास तेरा करपला, तेरे कार्य आनंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिस है जत कथा, नानक दास नदास तुदे आगे बिन वता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर

सहाई दोष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो।

व्यास गोविंद दास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहियो तोहारो बाहें गहे की लाज आस गोविंद दास तोहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद।

रे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचा तिसका होए उदारो एह वास्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक

जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन स ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तना पुरख विधाता पाए। जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिन सोए आए महा आनंद सदा कर कीर्तना पुरख विधाता पाए। आब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो।

हमें अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। सो कहौ टल गुर सेविऐ, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठी सच्ची पात सा, माल जन्म जन्म दी कट्टी है, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस ओए आई, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाई। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस ओए आई, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाई। आब मोहे राम जसो मन गायो, पयो प्रगास सदा सुख मन मह, सत गुर पूरा पायो, रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पाओ भागा, पई परापत वस्त अगोचर, राम
नामे रंग लगा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थका हौ मैं रोग मिटे कृपा ते जामते पै बिबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जामते काढ़े तिस गुर कै कुरबाणी गुर की टहल गुरु की सेवा

आयो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत।

जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

सवनांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावन हौमह बिचों जाए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावन हौमह बिचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख बसे मन आए नानक जो गुर सेव है आपना हों।